आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: शाम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता झग धारिता

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: पीछे नहीं हटूंगा भाई, मिला को हटा लूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: गारे गारे
1: ये गरबड़ जे
0: गारे गारे
1: ये सुर बदल
0: गया गारे गारे
1: ये हमको भटका दिया
0: गारे गारे
1: ये सुर की तरह जे ये सुर ये इन्ना आया है तो ये
2: यक चतुर नार हम छोड़

0: चतुर एक पेर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक चतुर नार करके सिंगार,
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार,
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात,
2: अपने ही जाल में फंसत जात,
1: हम मर

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना, मगर वो कहा।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रेडियो हॉटस्टार के दीवाने और दीवानियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन और आज है मिक्स मस्ती। यस, हिंदी और भोजपुरी गाने का तड़का लगने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि आज आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो दोस्त मुझे मैसेज नहीं करते हैं सिर्फ उनके लिए ये ऑफर आता है आज के दिन, क्योंकि उन्हें मैसेज करना तो आता ही नहीं है, इसीलिए वो सॉन्ग रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं या ना ही वो मुझे रेडियो हॉटस्टार के ऐप से मैसेज करते हैं। तो उनके लिए आज के दिन सुनहरा ऑफर आता है कि वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9135841232 9135841232। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं और अपने पसंद के गाने भी सुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का

जी बस यही मेरा कसूर है भाई, क्या करूं, माफ करना मुझे। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ़ भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से, वालेकुम अस्सलाम भाई जान, वेलकम करते हैं आपका भी। अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और आत्माराम पाटिल जी, वेलकम करते हैं आपका भी। आत्माराम पाटिल जी और अशोक देशमुख जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी, वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ जोड़ने वाले दोस्तों में नाम शामिल है हमारे नंदनी माँ जी का। माँ जी आपको मेरा सादर प्रणाम है, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और काजल झक्का जी यानी काजल झा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। संध्या पटेल जी, वेलकम दीदी आपका भी। और सर्वजीत सेठी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी भाई। और सुनीता गोप जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका भी। संदीप सुतार जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और सर्वेश भगत जी इनका भी वेलकम है, वेलकम है, वेलकम। एम ताहिर साहब आपका भी वेलकम है, सभी को प्यार भरा आदाब कह रहे हैं। और जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अक्षर जी भाई आपका भी वेलकम है। आज का सबसे जो पहली डिमांड है जो स्पेशली मेरे लिए है, दो दोस्त लेकर आए हुए हैं, एक है यानी प्रियंका जी और दूसरे है निशांत राय बोले जी, दोनों की सेम डिमांड है। और चूंकि आई एम द बेस्ट, यस यस यस आई नो दैट आई एम द बेस्ट, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को। और आते हैं इस गाने के बाद फिर आप सभी के गाने को प्ले करने के लिए। ओके आई एम द बेस्ट।

0: yes, yes. 세르게.
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और नंदलाल जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमरसा जी, मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी नंदलाल यादव जी। और कपूर चंद जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी कपूर जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। प्रियंका जी और निशांत राय जी अपने गाने में दोनों मिली जुली फरमाइश में शामिल किए हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और हमें संध्या जी लिखते हैं कि फर्स्ट सॉन्ग ही आई एम द बेस्ट जी, बहुत अच्छा लगा है। आत्माराम जी क्या कहते हैं, इनकी सुन लेते हैं।
3: अमन सर जी, प्रियंका और रायबोली जी, इनका मिली जुली पसंद बहुत ही लाजवाब। इससे पहले आपको ओपनिंग सॉन्ग आशिक हूँ मैं कातिल भी हूँ, ये भी बहुत अच्छा रहा सर। शुक्रिया आपको भी और भाइयों को भी, मैं आत्माराम पटेल।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और निशांत है, बोल लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिखते हैं कि अमन जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम करते हैं आपका भी। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि आई एम द बेस्ट सॉन्ग दी बेस्ट जी। ओके, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश। अगला जो डिमांड में मैं प्ले करने वाला हूँ सोनू गौतम जी का, क्योंकि अब भाई मैं बेस्ट हूँ तो भाई ये भी कुछ कहने वाले हैं ना, तो इन्जॉय कीजिए इनके गाने को। मैं मस्त कुड़ी

गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अमन जी आपको, आरजे वंशिका जी को, एमडी ताहिर जी को, सुनील कुमार जी को, प्रिंस पासवान जी को, सतीश शर्मा जी को, प्रीति दादा जी को, कुंता बिना जी को, प्रियंका जी को, पूजा भास्कर जी को, काजल सकाश जी को और

बिल्कुल, और इस बार बता दूं कि इस बार के स्टार ऑफ द वीक के मेहमान आ रही हैं अलीशा चिनाय और ये है यानी कि सुनिधि चौहान, दोनों की जोड़ी भी मस्त मस्त मस्त होने वाली है, मजा आने वाला है बहुत।

0: जी वो तो हूँ, और फिलहाल फीडबैक में फंसा हुआ और सोनू गौतम जी लेते हैं कि ये प्रियंका जी का गाना लाजवाब लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। एम ताहिर जी देते हैं कि अमन जी आपकी आपकी आतिफत और शहर अंगेश सदा का हर छोटा दिल से कायल है और सज और सजमिए लाजवाब लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। एम ताहिर जी देते हैं कि अमन जी आपकी आपकी आतिफत और शहर अंगेश सदा का हर छोटा दिल से कायल है और सज और सजमिए वो दिल पर आपकी आमद का तहे दिल से खैर मकदम है, क्योंकि श्रोताओं के प्रति आपका ये बेलोस अकीदत उस शो को एक नई रूह और नूर बख्श देती है। थैंक यू सो मच सर जी आपका, और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: अजय अवन सर जी, सोनू गौतम जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका, और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रियंका जी क्या कहती है।
2: कोई हीरो यहाँ कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है कोई

0: I'm the best.
1: ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा था. गुड इवनिंग अमन जी.
2: गुड इवनिंग.
1: एंड ये सॉन्ग आपके लिए भी है स्पेशली बिकॉज यू आर द बेस्ट.
2: थैंक यू सो मच. और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा है. धन्यवाद देते हैं उनको. और जितेंद्र जी लेते हैं कि नाइस पसंद है. और सोनू गौतम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए. दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए. और मैं बता दूं कि अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूं वो तो है हमारे अशोक पाल जी का. लेकिन जो दोस्त मुझे मैसेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए आज वो मुझे कॉल कर सकते हैं. बिल्कुल नंबर है 9135841232 9135841232 पे. फिलहाल सोनू गौतम जी कर रहे हैं. अशोक पाल जी इंजॉय कीजिए.

0: जी हेलो जी हेलो
1: सर जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका शुभ नाम?
1: अमन सर जी, मोहम्मद सलीम सीतापुर से बोल रहे हैं।
0: मोहम्मद सलीम जी, आप तो मैसेज तो आप ही करते हैं ना?
1: नहीं, कर नहीं पाए, किसी करवाते हैं मैसेज, हमें तो करना ही नहीं आता है, जब तो मेरे गाने भी सही से नहीं हो पाते हैं।
0: चक्कर तो ये आप मैसेज करना सीख जाइए भाई, है ना?
1: चक्कर हम असल में कुछ पढ़े लिखे नहीं है अमन सर जी, मुद्दा ही है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन है ना, आप मुझे कॉल कर सकते हैं आज के दिन आप कॉल करके बात कर सकते हैं।
1: अभी से कोई आ जाता है तो उससे करा देते हैं।
0: अच्छा,
1: फिर भी मेरा गाना कभी कभी नहीं बच पाता तो कोई बात ही नहीं, हम कहते नहीं। चलो
0: कोई बात नहीं, चलिए आज क्या सुनना पसंद करेंगे ये बता दीजिए।
1: अमन सर जी, रुखसत फिल्म में गाना है।
0: मतलब कौन सा गाना?
1: रुखसत फिल्म, सितम करने वाले दुआई दुआई।
0: सितम
1: पढ़ने वाले दुआई दुआई,
0: देखते हैं
1: अंदर उनकी सांसों की हस्ती उठेगी।
0: भाई अब तो आपका गाना मुझे ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं?
1: ना कथा में दिल से सितम क्या हो गई, सितम करने वाले दुआई दुआई, ये गाना आएगा अक्सर फिल्म का, मिथुन गाना आएगा।
0: अब तो मुझे तो वो तो मुझे मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप सही से अगर नहीं बताएंगे तो मैं और कोई गाना।
1: चलो कोई गाना अपनी पसंद सुना दीजिए, कोई बात नहीं।
0: मैं अपनी पसंद का
1: जी, आज आपकी पसंद सुन लेते हैं।
0: मिथुन का सुनवा दूं?
1: सुना दी कोई बात नहीं।
0: ओके तो चलिए हम आपको मिथुन का ही मैं आपको गाना सुनवाता हूँ। ओके
1: ओके जी।
0: और अच्छा एक चीज बताइए
1: जी,
0: चलिए ये मैं आपको ये गाना सुनवाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ओके
1: सुना दीजिए,
0: इंजॉय कीजिए।

0: और तब तक एक कॉल और आ गई है, रिसीव करता हूँ जी। हेलो, आपका शुभ नाम?
1: वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए प्लीज।
1: बेगूसराय बिहार से बोल रहे हैं, अहमद हुसैन सोना।
0: अच्छा, अहमद हुसैन जी।
1: जी
0: बहुत बहुत वेलकम है भाई, बेगूसराय से आप सुनते हैं, और कॉल करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी सर,
0: तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे
1: सर? इलाका फिल्म के मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ।
0: प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ।
1: जी सर।
0: ओहो, तो बिल्कुल प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। एंजॉय कीजिए, गाने को प्ले भी कर दिया मैंने। जी
1: प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है।
0: अच्छा, और ये बताइए गाने किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: ये सर आपको ही डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। संध्या जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी का जौक मौजूदगी बेहद नफीस है, जिन्होंने शो के आगाज में ही रूह को ताजगी झूमने पर मजबूर कर देने वाला वो नगमा को चुनकर लाया है, महफिल में एक नया रंग भर दिया है। मैं मस्त कुड़ी जैसे पुरजोश तराने का इंतखाब यकीनन उनके बेहतरीन इंतखाब और इस महफिल को रौनक बया करता है। ओ थैंक यू सो मच सर जी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। ओ थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पे जुड़ चुके ईश्वर साबले जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, चलिए इसी बात में अमृत ताहिर जी का ही गाना मैं प्ले करता हूँ। लिखते हैं कि गाना सुनना है और सबसे पहले अमन जी आपको और आपकी सुंदरता की मुरा जी को डेडिकेट है। हाय थैंक यू सो मच उनके लिए स्पेशली दिल से। और आरजे वंशिका जी है और स्पेशली डेडिकेट है मैजिकल गर्ल यानी कैना जी को। और उनके बाद हमारे वो दुलारा भाई जी है यानी सोनू गौतम जी, और बड़े भाई हमारे सुनील कुमार बाकी बिहार वाले हैं, और प्रिंस पासवान जी हैं, और सुनने वाले जितने भी साथी हैं सभी को मेरा नगमा डेडिकेटेड है। तो सुनवा रहा हूँ भाई, तुम मानो या ना मानो लेकिन यानी प्यार इंसान की जरूरत होती है। बिल्कुल

बिल्कुल, तुम मानो या ना मानो, यानी प्यार तो इंसान की जरूरत है, क्योंकि बिना प्यार के इंसान तो रह नहीं सकता है। लेकिन हाँ, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो रोबोटिक इंसान हूँ ना। वैसे ओके, और यहाँ पे यानी प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।

0: ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है अमन जी।
1: आज भी अधूरी है, मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
0: हॉटस्टार के चैनल पे मॉर्निंग में ही ये सॉन्ग सुना था हमने, जो कि शायद माधु दीक्षित का सॉन्ग है, काफी अच्छा है। थैंक यू।
2: वेलकम जी आपका भी, और अंगद मिसाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अंगद मिसाल जी। और सोनू गंगा जी लिखते हैं कि तुम मानो या ना मानो, इन पर प्यार इंसान की जरूरत होती है। लाजवाब सॉन्ग है ताहिर जी का, धन्यवाद देते हैं उनको। और जाकिर जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मंसूर जी, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जी, और सुनते हैं क्या कहते हैं अस्मरम जी।
3: अमन सर जी बैक टू बैक सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक सुनने को मिल रहे हैं, सभी भाइयों को प्यार से दिल से मन से आभार। मैं आत्माराम पाटिल।
2: वेलकम जी आत्माराम पाटिल जी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है, इनके बाद तो भाई मैं यानी के कैनाथ जी का गाना ही लेता हूँ, क्योंकि भाई दोनों यानी क्लब बर्ड है, एक दूसरे के बेपनाह मोहब्बत जो करते हैं और एक दूसरे को ही गाने डेडिकेट करते हैं। और इनका जो भी गाना डेडिकेट है वो एमडी ताहिर जी को ही है, और जो सवाल इन्होंने किया है भाई वो मेरे पास जवाब नहीं है, फिलहाल मैं गाना ही प्ले कर सकता हूँ। इंजॉय कीजिए इस गाने को। माय गॉड नहीं आया है।
4: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

और बहुत से दोस्त ये कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही यानी कॉल कर रहे हैं मुझे, स्टार्टिंग में कॉल कीजिएगा तो मैं आपको कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है। आपको कॉल करना है तो जब गाना खत्म होने लगा उससे पहले कॉल कर सकते हैं, तो मैं रिसीव जरूर करूंगा।

0: ओके तो आगे ये कॉल मैं रिसीव करता हूँ। जी हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम सर जी।
1: हेलो, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ
0: जी।
1: मेरा नाम सुशील कुमार है।
0: अच्छा सुशील कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका गया बिहार से।
1: हाँ जी भाई साहब,
0: तो कब से सुनते हैं सर जी रेडियो हॉट स्टार?
1: हाँ हाँ, मैं हमेशा सुनता हूँ और हमेशा फरमाइश के लिए रिप्लाई भी करता हूँ, पर देखिए आज मेरा फरमाइश अगर पूरा हो जाए तो काफी अच्छा हो।
0: लेकिन जब आप यानी मैसेज कर सकते हैं तो फिर कॉल क्यों किया आप?
1: सर मैसेज से पूरा नहीं हो पाया था इसलिए कॉल करना मजबूरी हो गया।
0: ऐसे कैसे हो सकता है कि मैसेज से आपका कॉल आपका यानी कि गाना प्ले नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
1: सर वही एक बार फिर से खत लिखना खुददार फिल्म का जो गाना है, प्लीज आप प्ले कर दें।
0: खत लिखना
1: हाँ, खुददार मूवी से
0: मतलब खत लिखना है पर सोचती हूँ।
1: जी जी
0: अच्छा
1: नहीं, और इधर काफी बारिश हो रही है।
0: ये तो मतलब ये कि खुददार का नहीं है गाना?
1: सर मैंने खुददार नहीं सुना था, खत लिखना तो अच्छा लगा था।
0: अच्छा तो मैं एक बार मैं चेक करता हूँ।
1: जी आप चेक करके एक बार प्लीज प्ले कर दें।
0: ओके ओके ठीक है। हाँ मुझे आपका गाना वो मिल गया है
1: जी,
0: गाना मैं प्ले करता हूँ, इंजॉय कीजिए।
1: ठीक है सर, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे संदीप पटेल जी लिखते कि मजा आ गया गाना सुन के। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, ओह माय गॉड, एक आ चुकी है कॉल, रिसीव करते हैं पहले। हेलो हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, शुभ नाम आपका
1: जी? मोहम्मद महताब बोल रहा है तमिलनाडु से।
0: मोहम्मद महताब जी, हफ्ता में एक दिन आते हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और बताइए
1: जी, और सब बढ़िया है? प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। मुझे एक गाना सुनना था, भोजपुरी गाना।
0: बताइए गाने के बोल।
1: मन, हाँ, मन के पंछी उड़े आसमानवा, के बोला जिया पिया पिया हो।
0: एक मिनट, जैसा यानी फिर से बोलिए।
1: मन के पंछी करे उड़े आसमानवा। अच्छा, ये गाना है
0: मन के पंछी
1: बोले। हाँ, मन के पंछी उड़े आसमानवा।
0: अच्छा,
1: बोला जिया पिया पिया हो।
0: ओके जी, तब तो ढूंढे के पड़ी हमारे गनवा के जी। ठीक बा, कोनो बात नहीं, क्या हम गाना ढूंढ रहा बानी, उम्मीद करत बानी कि उनका गाना जल्द से जल्द हम सुनवा दे। अब ओके, तो भाई यानी कि तामुल राडो में रहते हैं, लेकिन आप एक्चुअली रहने वाले कहाँ के हैं? बिहारी?
1: हम बिहार के हैं सर।
0: तो बिहार में कहाँ के?
1: समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं।
0: अच्छा, समस्तीपुर के हैं।
1: समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं।
0: ओके, चलिए फिलहाल गाना मैंने आपका आपका प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए। और गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे
1: जी? हॉकी सर सुनने वाले सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हो।
0: थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और जैसे कि सरोज भगत जी कुछ कह रहे थे, तब तक
1: आरजे अमन सर जी, कायनात जी अपने गाने में शामिल थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया गाना लगा, मजा आ गया है। और यहाँ एम डी ताहिर जी लिखते हैं कि इन कायनात जी आपकी इस बेहद खूबसूरत इंतखाब और दिल से भेजे गए इस नगमे ने तो सचमुच मेरे दिल को बेहद खास और यादगार बना दिया है। आपके इतने प्यारे नजराने और हसीन सरप्राइज के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और यह वो और यह एहसास हमेशा दिल के करीब रहेगा। ओके, जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार शानदार शानदार फरमाइश है। और देवराज कुमार जी बहुत दिन बाद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई। देवराज जी कहाँ थे, लग रहा है कि आज सूरज यानी पूरब के बजाय पश्चिम से निकल गया है। लिखते हैं कि राधे राधे अमन सर जी और रेडियो हॉटस्टार के सभी दोस्तों को भी राधे राधे। और जी मैं तो यही बोलने वाला हूँ। ओके जी। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन जी, गुड इवनिंग, वेलकम है सभी दोस्तों का भी, इन्हें प्यार भरा नमस्कार कह रही हैं। एमडी फैज जी लिखते हैं कि सो लवली सॉन्ग जी, मज़ा आ गया सुन के, वालेकुम सलाम, वेलकम करते हैं आपका भी। संध्या पटेल जी लिखते हैं कि भोजपुरी गाना सुन के मज़ा आ गई, लो हो ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: अमन सर जी आज के प्रोग्राम के बहुत सारे सॉन्ग नए श्रोताओं के नाम जो कि जिसको मैसेज नहीं लिखते आते होने को शुक्रिया आत्माराम पाटिल
0: जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, साथ साथ हम कि सोनू गौतम जी लिखते हैं कि भोजपुरी सॉन्ग बहुत ही बढ़िया लागल, मज़ा आ गया सुन के। तो ये बात है, एक और भोजपुरी गाना सुन लिया जाओ यानी प्रीति रायदास जी के डिमांड पर, लेकिन वो माई गॉड एक और कॉल आ गल, बस पहले इंडिया के अटेंड करता नहीं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम।
3: हेलो सर, मैं नीरज पानीपत से।
0: नीरज जी पानीपत से बहुत बहुत वेलकम है आपका, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया, आप सुनाओ।
0: अरे हम तो बहुत ही बढ़िया, झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में, चक चक एकदम गारंटी के साथ है। बोले तो बहुत
3: अच्छा। मैं एक बात पूछनी चाहता हूं।
0: जी जी,
3: जो आपका आपका प्रोग्राम चलता है ये तो लाइव आता है हमारे यहाँ, और दिन में नहीं आता, दिन में सिर्फ ये चलते गाने गाने चलते रहते हैं।
0: हाँ, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी सुबह 10 बजे से भी यानी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका प्रोग्राम आने वाला है लाइव। उसके बाद यानी कि आरजे यानी वंशिका जी शो करती हैं दिन में यानी वहाँ 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और 6 बजे मैं ही आता हूँ। फिर उसके बाद एक और आरजे अदिति जी आने वाली हैं, वो रात को यानी कि 9 बजे के बाद से शो करेंगे 11 बजे तक। तो समझिए कि दिन भर तो शो होता ही रहता है ना।
3: अच्छा, लाइव भी चलता है लेकिन आपको सिर्फ आपको प्रोग्राम, अगर आप दिन में बार को उसी दिन आते हो तो वो सब लाइव आता है।
0: जी जी जी,
3: और नहीं आते हैं
0: भाई, मुझे हर दिन समझ में, हर दिन यानी दिन में समय नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं दिन में नहीं आ सकता।
3: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी, तो बताइए।
3: अच्छा, और ठीक, वो एक गाना है,
0: बता दीजिए।
3: है तो मेरे ख्याल के भोजपुरी में ये है, लक्ष्मण सा देवर हमार और वो सीता सी भाभी, भोजपुरी
0: तो,
3: में
0: मतलब वो तो ठीक बा भोजपुरी में गाना, लेकिन फिल्म कुछ बताएंगे तब ना हम बताएंगे।
3: फिल्म तो नहीं बताया, बाकी यही दो बोल पता मेरे को उसके गाना बहुत बढ़िया है।
0: अब अंदाजी इस तरह से बताएंगे तो
3: सीता जी भौजी हमारे, ऐसे सीता जी भौजी हमारे लक्ष्मण से भैया।
0: अच्छा, सीता जी भौजी हमारे भौजी हमार, मैं मतलब ऐसा गाना मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए
3: जी।
0: भैया हमार यानी राम जैसन, भौजी सीता जैसन, ये वाला गाना।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: है ना।
3: अच्छा जी,
0: हमारे ख्याल से शायद यही गाना होना चाहिए, है ना।
3: जी जी,
0: ओके ठीक है, मैं इस गाने को प्ले करने की कोशिश करता हूँ, है ना।
3: अच्छा, ये सभी सुनने वाले को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके धन्यवाद, तो गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। उम्मीद करते हैं कि शायद यही गाना हो आपका, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ओके, इंजॉय कीजिए।
3: थैंक यू सर।

0: फिलहाल यहाँ पे जितेंद्र जी लेते हैं, शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया। राधा कृष्ण गोपी लेते हैं, मैं भी जुड़ गया हूँ सर जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे संध्या पटेल जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, ओके जी। देवराज कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी हाँ, तो आप वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट से भेज सकते हैं, बिल्कुल। और सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा ये आपको मैं बताता हूँ, रेडियो हॉट स्टार के नीचे सबसे नीचे दाहिने साइड में लिखा होगा मोर, MORE मोर, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट, वहाँ से कर सकते हैं। एक और कॉल आ गई है, हेलो हेलो हेलो। वालेकुम सलाम, आप सबसे पहले रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज।
1: हाँ, सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम सलाम जी, बोलिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और कुंता जी लेते हैं शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एमडी फजल, वाह बहुत सुंदर लाजवाब दिल खुश करने वाला गाना है, के लिए धन्यवाद देते हैं। और मनीषा शर्मा एक बार फिर से मैं ज्वाइन हो गई हूँ जी, कोई बात नहीं, वेलकम करते हैं आपका एक बार फिर से। चंदा जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग, वाह। इस वाले यानी कि साबले जी लिखते हैं कि अरे नंबर है 9135841232 9135841232 9135841232 इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ, जैसे कि यानी कि प्रीति रायदा जी का मैंने नाम उस समय यानी लिया था, तो इसलिए उन्हीं का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। तो इन्जॉय कीजिए प्रीति रायदा जी सभी।

0: के का आ रही है कॉल, रिसीव करते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो अमन सर
0: जी,
1: ईश्वर साबले बात कर रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है ईश्वर साबले जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आपका कार्यक्रम सुन के काम कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है।
0: अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। आपसे हमेशा मैं कहता हूँ कि सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए, लेकिन आप भेज नहीं पाते हैं। तो
1: काम चालू रहता है। अच्छा, मतलब काम करते करते सुनता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है सर आपका कार्यक्रम।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप इन्हें कब से सुनते हैं रेडियो हॉटस्टार?
1: रेडियो हॉटस्टार तो मैं अभी 15 दिन से सुन रहा हूँ।
0: 15 दिन से सुन रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे और किनको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: तो अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत गाने, 2-3 गाने बज रहे, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी महाराष्ट्री हूँ तो मराठी गाना बजना चाहिए सर।
0: तो मराठी गाना मुझे आएगा समझ में, तब ना मैं प्ले करूंगा।
1: बोल पूरा बता देता हूँ सर,
0: बताइए
1: खास डेडिकेटेड।
0: मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रोमिस नहीं करूंगा। बताइए
1: सर, जोगा फिल्म से अजय अतुल का संगीत है, उसको गीत के बोले जीव दंगला गुंगला रंगला।
0: हाँ सर, क्या चीज?
1: जोगा मराठी फिल्म है ये।
0: हाँ, और गाने के बोल क्या है?
1: गाने के बोले जीव दंगला गुंगला रंगला,
0: जीव दंगला रंगला।
1: हाँ, रंगला सर।
0: ओके, मैं ढूंढता हूँ इसको, अगर मिल जाता है तो ठीक। ओके, शायद हो सकता है कि आपका गाना मुझे मिल गया है। और किनको डेडिकेट करना है?
1: दो ये डेडिकेट अभिमान साबरे, बलराम साबरे, रामारी कदम और आपको।
0: चलिए, थैंक यू सो मच, गाना प्ले कर दिए, एंजॉय कीजिए।

0: जो भी है मुझे गाना तो सच में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा समझ में भी आ रहा है, लेकिन गाना मुझे कंप्लीट होता समझ में नहीं आया, इसके लिए आई एम सॉरी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि इससे पहले भी जो था गाना वो शानदार डिमांड था, मजा आ गया सुन के, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अर्जय मांसा जी, प्रीति जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे यानी राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं भोजपुरी गाना ने तो दिल खुश कर दिया है, थैंक यू सो मच प्रीति राजा जी को। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये प्रीति राजा जी की गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। संदीप पटेल जी लिखते हैं कि मजा आ गया गाना सुन के, धन्यवाद देते हैं प्रीति राजा जी, थैंक यू सो मच। और MD फैज जी लिखते हैं कि इस गाने का तो म्यूजिक बहुत ही सुंदर लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और संदीप सुताज जी लिखते हैं कि शुक्रिया अमन सर जी मराठी गाना सुनवाने के लिए, जी वो रंगला दंगला नाइस सॉन्ग जी, तो मुझे भी तो समझाओ इसका मतलब क्या हुआ। और फिलहाल यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मराठी गाना शानदार सुनकर दिल खुश हो गया, धन्यवाद देते हैं उनका भी। और प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देंगे। अगला जो डिमांड है वो अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी और आत्माराम जी का है।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार मस्ती, तो मुझे एक मस्ती भरा गीत सुनना है। फिल्म का नाम है दो प्रेमी और गाने का बोल है पायलिया छनकी के ना छनकी छनकी। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: रमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है दो प्रेमी और गाने का पायलिया छमकी की,
0: अरे छनकी छनकी
1: छमकी की ना
0: एकदम छनकी मत घबराइए।
1: स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत दहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत भगत सूर्य भगत आनंद शेखर अंदर प्रकाश सुनी कुमारी मुनि कुमारी सूरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख जी आत्माराम पाटिल जी सैयदनु जी संतोष कुमार जी मुन्ना जी आरजे अमन सर जी सुंदरता की मुरत जी आरजे वंशिका जी आरजे आकांक्षा जी आरजे MS परमार जी आरजे आदित्य जी आरजे सोनी जी आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल सभी को सुना जी का जयराम जी के
0: आत्माराम
3: सर।
0: जी
3: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग संध्या सप्रेम नमस्कार जी, मैं आत्माराम पाटिल। तो सर आज स्टार मस्ती की वजह में मैंने मूवी लाई है सर, 1980 में बनी थी, मूवी का नाम है दो प्रेमी और सिंगर है सर मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा फोडवाल, आर्टिस्ट है ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी। वैसे इस गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर, पायलिया चमकी के नाम बिजुरिया चमकी रे चमकी चमकी बिजुरिया पायल के नाम। तो यह गाना बिल्कुल सभी रेडियो हॉटस्टार पर, जैसे कि हमारे अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद दोनों जी है, दत्ता कदम जी है, गजानन भाव का पूरा ग्रुप है और सभी आरजे बहना और सभी सुनने वाले को आज का गीत बिल्कुल
4: पायलिया छनकी के नाम
5: छनकी।

0: पायलिया चनकी के ना।
1: अरे छनकी ना, और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और प्रीति दादी लिखते हैं कि सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, गाने को पसंद करने के लिए। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, थैंक यू सभी दोस्तों का। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं धन्यवाद अमर सर हमारे फरमाइश का गीत सुनवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मराठी गाने का मीनिंग पूरा मीनिंग आ चुका है मेरे पास, थैंक यू सो मच। एम डी फैज जी लिखते हैं कि जी बिल्कुल दिल को खूबसूरत झक्कास गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं ये हमारे सभी भाइयों जी की मिलजुली पसंद, मुझे पसंद है ये पहले छनकी का नाम, मजा के सुन के। और देवराज कुमार लिखते हैं कि सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पांडे जी का गाना अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं तीनों दोस्तों को। मनीषा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है, थैंक यू सो मच मनीषा शर्मा जी। और ये फिर बैठ
2: अमन जी, अभी दो सॉन्ग बजे, एक तो भोजपुरी सॉन्ग बजा जो कि हमें नहीं समझ में आया, और उसके बाद एक मराठी सॉन्ग बजा तो वो भी समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ आप जब भी भोजपुरी सॉन्ग चलें तो उसका थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट बता दीजिए या करें, ताकि हम लोग को भी पता चले कि वो सॉन्ग कितना अच्छा है।
1: ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, मैं बता दिया करूँगा। एम ताहिर जी देते हैं कि ये दिल को सुकून देने वाला ये नगमा है, थैंक यू सो मच। और कुंता जी देते हैं कि तीनों दोस्तों की मिली जुली डिमांड शानदार, बहुत अच्छा लगा है। काजल झका जी लेते गाना बहुत ही प्यारा है। और राधा कृष्ण गोप जी लेते हैं कि ये तीनों दोस्तों को धन्यवाद देते हैं बेहतरीन गाना सुनवाने के लिए। प्रमोद जी लेते हैं कि सभी दोस्तों की पसंद लाजवाब लगी। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी की है, और सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं ये बहुत ही प्यारा गाना, इन्जॉय कीजिए सुनीता गोप जी।

0: जी बिल्कुल, ये गाना यानी कि सुनीता गोप जी बहुत ही, आज ये गाना और सुन सकती हैं आप, बनती है सॉन्ग विनर, बहुत बहुत बधाई आपको, और इसको ड्रेस सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा अशोक देशमुख जी अथवा नाम पाटिल तीनों भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: वेलकम जी आपका भी, और संध्या पंडित जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, गाने सभी बहुत ही प्यारे प्यारे चल रहे हैं। रूपचंद गोयल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रूपचंद गोयल जी, और राधा कृष्ण गोप देते हैं संध्या डिमांड के लिए, अपनी श्रीमती जी को धन्यवाद देते हैं, और काजल झका जी लेते हैं गाना सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि वो तेरे प्यार में पागल हो गए हम, अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में शानदार गाना सुनने को मिला है, कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिम्पी जी का है, सुनना चाहती हैं, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, इंजॉय कीजिए।

0: वहाँ
1: लिंकिंग रोड कभी वार्डन रोड डंकन रोड लैमिंगटन रोड कैडल रोड कभी पेडर रोड चर्नी रोड।
2: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना। और मैं बता दूं इस फिल्म के दो गाने जो होते हैं दोनों बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। एक और है और एक वो है यानी कि कभी तू छैला लगता है। दोनों गाने बहुत ही प्यारे लगते हैं इस गाने के सॉरी इस फिल्म के। और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है धन्यवाद देते हैं। और गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं वेलकम करते हैं आपका भी। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग जी। और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं कि मस्त सॉन्ग है। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये तुमसे देखते ही प्यार हुआ गाना मुझे अच्छा लगा है। और एम डी फैजी लिखते हैं कि भाईजन गजब का गाना है दिल से शुक्रिया इस गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी नंदनी माँ लिखते हैं कि गाना सच में सुपर सुपर सुपर है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ आरजे वंशिका जी का। और इंजॉय कीजिए आरजे वंशिका जी अपने गाने को।

0: बिल्कुल फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और प्रियंका जी क्या कहती हैं, सुनते हैं।
1: अमन जी, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, जो कि मेरा भी पसंदीदा सॉन्ग है।
0: अच्छा,
1: तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा।
1: ऊपर वाले की है माया, उसने हमको

0: पूछो अब तुम कहाँ। ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा है और इसकी जो एक एक लाइन है वो काफ़ी ही खूबसूरत है, जो कि बहुत अच्छी लिखी गई है। शुक्रिया।
1: ओके, थैंक यू सो मच आपका भी। और ये सर्विस वगैरह जी क्या कहते हैं?
2: आरजे अमन सर जी, आरजे बंसिका जी, अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे शिल्पा बेंच लिखते हैं कि होठों पे बस तेरा नाम है, बहुत ही प्यारा गाना भी है। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आरजे बंसिका जी के पसंद बेहतरीन लगी है और लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं उनको भी। और देवराज कुमार लिखते हैं कि आरजे बंसिका जी के पसंद सुनकर मुझे मजा आ गया। ओके, संजय पटेल जी लिखते हैं कि होठों पे बस तेरा नाम है, लवली सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और आरजे बंसिका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण गुप्त लिखते हैं कि खूबसूरत डिमांड के लिए आरजे बंसिका जी को धन्यवाद देते हैं। और MD फैज लिखते हैं कि आरजे बंसिका जी के पसंद लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो जाकिर खान जी का है। जाकिर खान जी सुनना चाहते हैं सनम ये प्यार ही तो है। बिल्कुल, ये प्यार ही तो है। एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल सनम, ये प्यार ही तो है। वैसे फिर बैग भी आ चुके हैं, शामिल करते हैं।
1: क्या तुम मेरे पास नहीं आओगी?

0: ये सॉन्ग भी बहुत प्यारा है।
1: ओके जी, और हमारे इस पर सावले जी लिखते हैं कि अमन सर जी यानी प्रियंका जी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ये फिर गए
2: जी बिल्कुल लाजवाब गाना है, देख करके तो नहीं मुस्कुराते हैं, आपको सुन के जरूर मुस्कुराते रहते हैं।
1: अच्छा,
2: बहुत प्यारा गाना, बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम।
1: ओके जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं गाना सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सुनीता गोप जी लिखते हैं कि तो इसका अब तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे लिंक भेज दीजिए, उसका मैं कोशिश करूँगा फिलहाल अगर मुझे नहीं मिलेगा तो। और रूपचंद जी लिखते हैं कि जाकिर जी की पसंद अच्छी लगी है, धन्यवाद। मनीषा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। संध्या जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है, सुनने को मिला, मज़ा आ गया है सुन के। राधा कृष्ण को लिखते हैं बेहतरीन डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सिया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राधे राधे। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मिसाल अंगा जी का है, सुनना चाहते हैं जो भी देखे आपको देखता रह जाए, सच में ऐसा है। दो आंखें मारा आपका गाना है।

0: भी बन जाए।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे जाकिर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और गजानंद जी लिखते हैं दोस्त मिसालंगा जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद उनको। और सोनू गौतम जी लिखते हैं जो भी देखे आपको देखता रह जाए, बहुत ही बेहतरीन गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं भाई। संजय जी लिखते हैं कि वाह जी बिल्कुल, जो भी देखे आपको बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। एमडी फैज लिखते हैं कि वाह क्या गाना है भाईजान, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और दत्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। या एक यहाँ पे कॉल रिसीव करना पड़ेगा मुझे। हेलो हेलो हेलो जी नमस्ते।
2: हेलो
1: जी हाँ, आपका शुभ नाम।
2: आवाज नहीं आ रही क्या?
1: आवाज आ रही है आपकी। हेलो
2: आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी।
1: तो हो सकता है तो फिर से दोबारा कॉल कीजिए मुझे। ओके कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पे प्रमोद जी लिखते हैं कि भाई मिसालंगा जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से कॉल रिसीव करते हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपका शुभ नाम।
2: जी सोमेंद्र कुमार।
1: अच्छा सुमेंद्र कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: यहाँ से बोल रहे हैं, दिल्ली से।
1: जी दिल्ली से?
2: दिल्ली।
1: ओके जी, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: सर हमें गाना सुनना है चल अकेला चल मेरा मेला छूटा रे।
1: चल अकेला चल है ना
2: जी।
1: मुझे गाना मिल जाता ना, चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छोटा राही चल, शायद यही गाना है ना।
2: जी हाँ जी।
1: ये तो मतलब निक्के मुकेश की आवाज में है, फिल्म का नाम है संबंध।
2: शायद आवाज के बारे में तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन
1: कोई बात नहीं है। गाना किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: ये सोनू गौतम भाई को।
1: ओके जी, तो चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद के, एंजॉय कीजिए गाने को।
2: ठीक है सर।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास है, सुनते हैं क्या कहते हैं प्रियंका जी।
1: जो भी देखे आपको देखता रह जाए।
0: अच्छा,
1: जो भी देखे आपको देखता रह जाए, आप जिसे मिल जाए उसकी जिंदगी बन जाए। अरे आप जिसे मिल जाए उसकी जिंदगी बन जाए। ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और ये सॉन्ग सुन के हमें भी कुछ याद आ गया था, इसलिए ये सॉन्ग सुना दिया। थैंक यू।
0: ओके जी, और ये फिर मैं।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
2: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आपका जो आपने मेरा गाना सुनवाया अमन सर जी, और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं मिसाल अंगद, बीड, महाराष्ट्र।
0: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी, और यहाँ एवरी फजी से वाह सुपर ओल्ड इज गोल्ड गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। संध्या जी लिखते हैं कि वाह गाना अच्छा लगा है, और अकुंता जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, बहुत खुश हो डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। एक और आ रही है, कॉल रिसीव करते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो सर, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम सर मोहम्मद शकील है।
0: जी शकील साहब, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, कैसे हैं आप?
3: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक
3: के साथ। बात कर रहे हैं सर।
0: जी
3: साइन खराबी से।
0: बोलिए
3: सर, मुझे एक सॉन्ग सुनना है। कसूर फिल्म का जिंदगी बन गए हो तुम। सबसे पहले डेडिकेट आपको,
0: थैंक यू
3: सरवेद भगत को, सरवेद भगत को, ताहिर ताहिर को, प्रियंका जी को।
0: ओके, सुनवा दिया,
3: इंजॉय कीजिए। और सुनने वाले हैं सभी को
0: धन्यवाद, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल जिंदगी बन गए हो तुम। और वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। और मनीषा जी लेते हैं बेहतरीन सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और अनिल मेहता जी लेते हैं कि मुझे ये गाना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत लाजवाब लगता है, उनको धन्यवाद देते हैं। प्रमोद जी लेते हैं वाओ ब्यूटीफुल ड्रीम माइंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया सुन के। नंदनी मां लिखते हैं कि बहुत ही मनभावन गाना रहल बाबू चल अकेला जी। जानिसार अख्तर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है जानिसार जी आपका। और ये ईश्वर साबले जी लिखते हैं कि ये प्रियंका जी का गाना वो आवाज़ मुझे अच्छी लग रही है वो जो गाना गा रही है तो। और एमडी फैज जी लिखते हैं जी बिल्कुल खूबसूरत गाना है, यादगार गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और

0: तो ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है और जिसने भी इस सॉन्ग की डिमांड की है उनके लिए हमारा तहे दिल से शुक्रिया।
1: ओके जी, और यहाँ पे गजन अंजलि लिखते हैं, जिंदगी बन गए हो तुम, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत धन्यवाद सर्वजीत शेट्टी जी का।

0: बिल्कुल, और कहाँ रहे भाई बताइएगा जरूर। वैसे फिलहाल मेरे पास फीडबैक है और पीपुरा जी जी चुके हैं, लिखते हैं कि जिंदगी बन गए हो तुम गाना है, मुझे एक नंबर लगा है। और मनीषा जी थोड़ा पहले याद दिलाते तो बहुत अच्छा लगता, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। और फीडबैक सुनते हैं।
1: कितने दिन

देते हैं, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों के भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और संध्या जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड ट्वाइस बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि अमन जी हम भी जुड़ चुके हैं, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अच्छा ऐसा है, तो बारिश का आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार। ज्योति वारा बना दे एम डी फैजी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद शुक्रिया, बहुत ही प्यारा गाना सुनवाने के लिए। दत्ता जी लिखते हैं देवराज जी आपकी पसंद सुपर हिट लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और गजानंद जी लिखते हैं कितने दिनों के बाद मिले हैं, बहुत ही प्यारा।

0: अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये कितने दिनों के बाद मिला, गाना मुझे बहुत ही प्यारा है। ओके जी, और एक आ रही है कॉल, रिसीव करते हैं। हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, पहले रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज।
1: हाँ बंद हो गया सर।
0: हाँ बताइए।
1: मुंबई धारावी से अकरम अली बोल रहे हैं।
0: अकरम अली जी, अच्छा वेलकम करते हैं आपका भी, और बताइए।
1: ठीक है सर, एक गाना सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: द ग्रेट फ्यूचर, हुलाला हुलाला।
0: अच्छा, उलाला उलाला।
1: हाँ सर।
0: ओके जी, सुनवाएंगे, एंजॉय कीजिए।
1: ठीक है सर, नमस्कार।

और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मुझे कॉल करें, जो लोग मुझे इन सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो लोग सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते हैं वो लोग प्लीज मुझे कॉल ना करें। ये उनके लिए है जो कभी इन सॉन्ग रिक्वेस्ट से गाने नहीं भेजते हैं, ये वो मुझे कॉल कर सकते हैं प्लीज़।

बिल्कुल। और अनिल मेहता जी लेते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और संध्या, और संध्या पटेल लिखते हैं कि अमेजिंग पसंद है। गजानंद जी लिखते हैं कि उला ला गाना मुझे अच्छा लगा है। और एमडी फैजी लिखते हैं उला ला मस्त डांसिंग सॉन्ग, सुनकर मजा आ गया सुन के। और कुंता जी लिखते हैं सुपर सुपर सुपर सॉन्ग की पसंद है, मजा आ गया सुन के। राधा कृष्ण लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है। और ये फीडबैक सुनते हैं सोनू गौतम जी क्या कहते हैं।

0: जरा बताओ मुझे सनम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। थैंक यू अमन भाई, इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए, दिल से शुक्रिया।
1: वेलकम। और अगला जो डिमांड इसी बात पर मैं सुनवा रहा हूँ, काजल झक्का जी का, सभी दोस्तों को डेडिकेट कर रही है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटेस्ट, आज आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आते हैं। पिकू राय लिखते हैं कि ना बजाना बैंड बराती ना नाच जाई हो, बाबू के पैसा बचे मजा आ गया। सोनू गौतम लिखते हैं कि काजल झका जी के पसंद एकदम झकास लगी है, उदित नायक की आवाज़ में भोजपुरी गाना बहुत ही बढ़िया लगा है। और राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, और देवराज जी लिखते हैं जबरदस्त भोजपुरी सॉन्ग सुनकर तो मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं,
1: वाह काजल जी का गाना एकदम झकास, लव मैरिज कलर भैया ना तो पैसा बच जाई हो, बहुत मस्त गाना है। अमन भाई आपको पसंद आया या नहीं बताइएगा।
0: जी जी,
1: उनको इस गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, और यहाँ पे फीडबैक सुनते हैं प्रियंका जी का।
2: अमन जी, ये भोजपुरी सॉन्ग था काजल जी का जो काफ़ी अच्छा था, और हमको थोड़ा सा समझ में आया है कि शायद वो ये कह रहा है कि बैंड बाजा बाराती की जरूरत नहीं है और लव मैरिज करना शायद बेस्ट है,
0: ताकि
2: खर्चा बच जाए।
0: सही समझा आपने, बिल्कुल।
2: थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: ओके जी, और फिलहाल यहाँ काजल झकास लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। कुंता जी लेते हैं थैंक यू सो मच काजल झकास जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। और राधा कृष्ण को जी लिखते हैं भोजपुरी गाना सुनकर तो दिल गदगद हो गई वह एकदम। और प्रमोद कुमार लिखते हैं काजल टीचर जी का पसंद लाजवाब है। अगला जो दिल जो डिमांड है वह हमारे नीलेश सरोकार जी और गजानंद सरोकार जी के ग्रुप का है, तो सुनवाते हैं दिल ना दिया। बिल्कुल भाई, लव मैरिज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और सोनू गौतम दिलीप का दिल ना दिया दिल ना लिया गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। गजानन जी के ग्रुप को धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी, हमें तो पता ही नहीं था कि उदित नारायण जी भोजपुरी सॉन्ग भी गाते हैं। जब से हम रेडियो हॉटस्टार पे ज्वाइन हुए हैं तब हमें पता चला कि उदित नारायण जी भोजपुरी सॉन्ग भी गाते हैं। हम लोग तो उनके हिंदी सॉन्ग ही सुने हैं, इसलिए हमें पता नहीं था कि काजल जी ने जिस सॉन्ग की डिमांड करी है उस सॉन्ग को उदित नारायण जी ने गाया है।
0: जी बिल्कुल, उदित नारायण जी ने बहुत सारे भोजपुरी गाने गाए हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर राजीव तिवारी जी लिखते हैं दिल ना दिया वाला गाना बहुत ही सुपरहिट लगा है, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी को प्यार भरा नमस्कार, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। रवि महाराज जी लिखते हैं गुड इवनिंग अमन सर जी, गुड इवनिंग, वेलकम करते हैं आपका भी। और MD5 जी
2: जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे?
0: और कुंता बिल लिखते हैं गजानंद जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारा है, शानदार है, फीडबैक सुनते हैं।
3: हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया क्रिश फिल्म का, जो हमारे आदरणीय गजानंद सालोकार जी का गाना था, उनके गाने में मुझे याद किया, तो मैं गजानंद सालोकार जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मस्ती भरा गाना सभी दोस्तों को सुनवाया। मैं फिर एक बार मिसाल अंगद बीड़।
0: ओके जी, और यहाँ पे नीलेश विकास जी देखते हैं, अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। और पीकू राय जी,
4: दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया,
0: मेरी मम्मी जी कॉल कर रही हो,
4: आके दुनिया में भी अगर प्यार ना दिया तो क्या किया। बहुत शानदार सॉन्ग रहा अमन सर
0: जी जी,
4: और सुन के सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों को भी ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा होगा।
0: बिल्कुल अच्छा लगा होगा। ओके जी, और यहाँ पे यानी प्रीति राय दास जी लेते हैं कि इधर बारिश जी, बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए तो मम्मी जी का कॉल आया हुआ है कि जल्दी से घर आ जाओ। हाँ मम्मी जी, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल, वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो है राहुल पासी जी का, सुना जाते हैं ना जाने कहाँ से आई है। अरे

0: और एक आ रही थी कॉल लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी देर हो चुकी थी, गाना प्ले हो रहा था। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और रवि मार जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: दिल ना दिया, दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, आके दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया।
2: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे परम मित्र गजानंद सालोगार जी का, मजा आ गया और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: फिर से दोबारा आ गई कॉल रिसीव करते हैं। हेलो हेलो,
3: नमस्कार रामन सर।
0: नमस्कार, कैसे हैं?
3: हम अच्छे, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही अच्छे। आपका शुभ नाम?
3: मैं अभिमान साबले पाटिल बोल रहा हूँ अमन सर।
0: अभिमान साबले पाटिल जी, अच्छा बहुत बहुत वेलकम है, महाराष्ट्र से?
3: हाँ महाराष्ट्र, बीड महाराष्ट्र से बोलता हूँ।
0: ओके जी, तो कैसे हैं अभिमान साबले पाटिल जी?
3: हम अच्छे हैं लेकिन हमारे यहाँ बारिश में इसीलिए जरा खंत है।
0: ओ, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है स्टूडियो के बाहर।
3: हमारे यहाँ भेज दीजिए।
0: हाँ हाँ भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। फिलहाल बताइए तो आप अभी क्या सुनना पसंद करेंगे अभिमान साबले पाटिल जी?
3: जंगल लव फिल्म से।
0: हाँ हाँ, गाना
3: राजा ने कहा जो हीर से,
0: लैला ने कहा
3: जो मजनू से।
0: ओके जी,
3: वही कह दे तू।
0: इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया,
3: धन्यवाद अमन सर।
0: और गाना डेडिकेट करना चाहिए किसी को?
3: सभी को, हमारे रेडियो जे हॉटस्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को, हमारे ईश्वर साबड़े, हमारे काका बलिराम साबड़े, राम हरि कदम, हमारे रेडियो मित्र जलाल भाई और अल्ताफ हुजरे जी, और हमारे जानला के दशरथ सागुते और इनो शेख।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: वैसे फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास और ये फीडबैक।
1: बड़ी छोटी है मुलाकात, बड़े अफसोस की है बात, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। ये लड़की नहीं है नागिन है, जो नींद से जाके आई है, जो नींद से जाके आई है।
0: अच्छा जी।
1: मेरे हाथों में दे दे हाथ, बड़े अफसोस की है बात। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मेरी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी का जो सॉन्ग सुनाया उसके लिए थैंक यू सो।
0: वेलकम है आपका भी। और यहाँ अनिल मेहता जी क्या कहते हैं?
2: बहुत ही लाजवाब गाने चल रहे, एक से एक बढ़कर गाने चल रहे, सभी दोस्तों के गाने सुनकर बहुत

और कुलता बहन जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ना जाने कहाँ से ये वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद। गजानंद जी लिखते हैं अभिनंदन सामने पाटिल जी के पसंद जंगल लव का बहुत अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। पिकुरा लिखते हैं कि लैला ने कहा मजनू से गाना मुझे सुपर हिट लगा है, शानदार लगा है। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि लैला ने कहा जो मजनू से बहुत ही प्यारा गाना है जी, धन्यवाद। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है, और भाई प्रमोद जी क्यों नाराज है भाई हमसे, क्या हुआ है, मैंने क्या कर दिया है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और लक्ष्मी जी बांका बिहार से जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि ये जंगल लव का गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। MD5 जी लिखते हैं कि एक्सीलेंट सॉन्ग, बहुत खूबसूरत, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो सिया जी की है, और सिया जी सुनना चाहती हैं नई झुलनी के छैया, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और अभिमान साहब ने पार्टी से लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया गाना प्ले करने के लिए। प्रियंका जी क्या कहती हैं?
1: ले लाल कहा जो मजनू से, रांझा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे, वही मुझे

0: मूवी का नाम तो नहीं पता बट सॉन्ग बहुत प्यारा है
1: जी। जंगल ऑफ का था और राजीव त्रिवेदी जी ने भोजपुरी गाना सुपरहिट लगा है, धन्यवाद देते हैं आपको। और एमडी फाजी सिंह जी बहुत ही भोजपुरिया धमाल वाला गाना मुझे सुनने को मिला है, मजा आ गया। अनिल जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। पीकू राय लिखते हैं कि नई झुलनी के छैया वाला गाना भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। राधा कृष्ण को भी लिखते हैं भोजपुरी गाना मुझे सुनकर दिल खुश हो गया है, धन्यवाद देते हैं। और लक्ष्मी जी बांका बिहार से लिखते हैं कि अमन जी झुलनी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके जी, अम्रपाली दुबे पर फिल्म आई हुआ गाना है, अच्छा लगा है। और प्रमोद जी लिखते हैं सो लवली सॉन्ग है। ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो रूपचंद गोयल जी का है, और रूपचंद गोयल जी सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए।

अरे हम तो करेंगे क्योंकि तू चीज बढ़िया मस्त मस्त। वैसे फिलहाल यहाँ पे जानिसार जी लेते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस सॉन्ग है। और सोनू गौतम जी लेते हैं कि ये तुरुरु तुरुरु वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लक्ष्मी जी बांका बिहार से लिखते हैं कि अमन जी मैंने सुना है रेडियो हॉट स्टार से इनके प्यार शुरू होता है और सबके दिलों तक ये पहुंचता है, ये एलआर फिल्म का गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये भी गाना सुपर सुपर सुपर हिट है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि शुक्रिया बहुत ही लाजवाब डिमांड के लिए। और पी कुराई लिखते हैं कि तुरुरु तुरुरु कहां से करूं प्यार शुरू। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और फैज जी लिखते हैं कि जी ओके अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूं ब्रह्मजीत जी का, सुनना चाहते हैं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बिल्कुल।

0: बिल्कुल तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त और चीज है, सुनते हैं।
1: तुरुरुक तुरुरुक कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू। प्रियंका जी जो फीडबैक दे रही है और गाना गा के उनकी लय और आवाज में जो जादू है, उनको दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
0: ओके जी, और कुंदा जी लिखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजीत भाई जी लिखते हैं मोहरा का गाना मुझे शानदार लगा है, तू चीज बढ़िया मस्त मस्त। प्रियंका जी क्या कहती है, सुनते हैं।
2: अमन जी आज के सॉन्ग काफ़ी प्यारे हैं जो कि सभी बेहतरीन हैं, थोड़ा सा मैं ये सॉन्ग गुनगुनाना चाहती हूँ।

0: डोर तेरी चाल पे आशिक मोर मोर तेरी जल्प घनी चित चोर चोर घन घोर घटा हर मस्त मस्त में चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त में चीज बड़ी हूँ मस्त। बहुत प्यारा सॉन्ग था।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी और ईश्वर यानी के ईश्वर साहब भी देते हैं कि भाई यानी प्रियंका जी का आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, उनको धन्यवाद। और पिकुरा लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। देवराज जी लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार है मस्त मस्त, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है और मज़ा आ रहा है। अगला जो डिमांड है वो हमारे शाहिद अंसारी जी का है और शाहिद अंसारी जी हनुमान फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। इंजॉय कीजिए शाहिद अंसारी जी।

0: बिल्कुल खो गया है वैसे यहाँ पे प्रमोद जी लिखते हैं तू चीज बड़ी है मस्त मत गाना मुझे अच्छा लगा है और दत्ता जी लिखते हैं कि शायद अंसारी जी के पसंद अच्छी लगी है उनको धन्यवाद। पिकुरा लिखते हैं कि एक लड़का था एक लड़की थी कहानी सुनो अच्छा लगा गाना ये सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: वाह बहुत ही लाजवाब गाना चल रहा है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त ये गाना भी बहुत अच्छा चला है उसके पहले भी बहुत अच्छे गाने सभी चल रहे हैं एक से एक बढ़कर गाने चल रहे हैं भोजपुरी गाने हिंदी गाने मराठी गाने तो क्यों ना एक गुजराती गाना भी हो जाए तो मैंने
0: जी बिल्कुल अगर टाइम लगा तो जरूर हो जाएगा टेंशन मत लीजिएगा। राजीव जी लिखते हैं कि आप सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजिएगा ना मैं कोशिश करता हूँ। अभिमान सामने जी लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार भी मस्त मस्त है और प्रमोद जी का अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले कर रहा हूँ एंजॉय कीजिए भाई प्रमोद कुमार जी आगरा वाले।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। और देवराज जी लिखते हैं कि ओके ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए भाई प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और शाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे यानी कि कपूर चंद जी का। कपूर चंद जी एंजॉय कीजिए।

सच में गाना ये भी बहुत ही प्यार लगा है और मुझे समय मिलता तो जरूर इनको भी विनर बनाता, लेकिन आज मेरे पास समय कम है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मुझे जैसे बारिश खत्म होगी तो मुझे निकलना पड़ेगा आज। और पिकू राय लिखते हैं कि ये कपूर जी का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। राजीव जी लिखते हैं कि कपूर चंद जी के पसंद सुपर सॉन्ग है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल ओके अगला जो डिमांड है वो नंदलाल जी का है। नंदलाल जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

माय गॉड, एक डिमांड में भूल गया था, ये मनीषा जी का। अगला जो डिमांड है वो मनीषा जी का ही है। फिलहाल मेरे पास फीडबैक है, वो प्रमोद जी का लिखते हैं कि भाई कपूर चंद जी की डिमांड लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राजीव जी लिखते हैं कि अगर जिंदगी हो और भी कोशिश करूँगा इस गाने को प्ले करने के। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि आवाज़ यानी कि कटकट की आ रही है। अच्छा, शायद हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। और गुलाब जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई गुलाब जी। राधे राधे लिखते हैं। और एमडी फैसिलिटी जी बिल्कुल खूबसूरत ये नगमा है, धन्यवाद देते हैं नंदलाल जी को। हुकुम चंद जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच नंदलाल जी। और पीपुरा लिखते हैं कि तूने मेरा दिल ले लिया, बहुत ही प्यारा गाना है। और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं इस डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो मनीषा शर्मा जी का है, और सुनवाने चाहती है, बहुत ही प्यारा गाना, मेरा फेवरेट गाना, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। और गजानंद दोस्ती प्रमोद जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, उनको धन्यवाद देते हैं। और पिकुरा लिखते हैं कि रूठ जाए तो मनाऊंगा गाना, तू मेरी जिंदगी है गाना बहुत ही प्यारा है। थैंक यू मनीषा जी आपका। और राजीव त्रिवेदी जैसे गाना मुझे बहुत ही प्यारा है। और मनीषा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और अगला जो डिमांड है आमना खान जी का है, आमना खान जी सुनना चाहती हैं ए नाजनीन, सुनो, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल ए नाजनी सुनो ना, और यहाँ पे फिकुर लिखते हैं कि ए नाजनी सुनो ना गाना मुझे अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। राधा कृष्ण को लिखते हैं लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और अनिल मेहता जी लिखते हैं अभिजीत की आवाज़ में बहुत ही लाजवाब गाना जी। कुंता जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी और आमना खान जी दोनों की पसंद बहुत ही प्यारी है। और आमना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग। एंड शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ए नाजनी सुनो ना गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने जा रहा हूँ जिसे लेके आई हैं वो सुनीता गोप जी, जो आज की ये बनी हुई है विनर, तो उनके गाने को मैं प्ले कर रहा हूँ। इंजॉय कीजिए सुनीता गोप जी। ओ माय गॉड, डाउनलोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तब तक मैं अच्छा हो गया है।
1: तो हरे की चुन लेनी
0: अब मुझे लगा नहीं हुआ है डाउनलोड।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना और फिर लिखते हैं कि सच में बहुत ही प्यारा गाना लगा था, मजा आ गया सुन के। इसी बात अगला जो डिमांड है वो हमारे वो शिवम जी का, और शिवम जी इंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।

बिल्कुल, अगर जिंदगी हो तो तेरे सॉन्ग हो, अगर मौत हो तो तुझसे पहले ही हो, बिल्कुल। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो मैं प्ले करने वाला हूँ किनका, यानी शिल्पा बेन जी का। और शिल्पा बेन जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बिल्कुल। और यहाँ पे सुनीता को जी लेते हैं अमन जी, धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए फिर से। और राजीव जी लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा फेवरेट गाना सुनाने के लिए। और पीकू राय लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे सरबजीत सेठी जी का, सुनना चाहते हैं दो गोल कह के हारे हैं जी, बिल्कुल हारे हैं, एंजॉय कीजिए।

0: बस हमारे हो, सिर्फ हमारे हो। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और फीडबैक और सारे हैं यहाँ पे। हुकुम तंजी लिखते हैं लाजवाब गाना के लिए, बहुत धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बेंजी लिखते हैं कि दो बोल कह के हम तो हारे हैं, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा भी गाना प्ले करने के लिए थैंक यू सो मच। और पिकुरा लिखते हैं कि दो बोल कह के हम तुम्हारे हैं, गाना बहुत ही अच्छा लगा है। कुंता जी लिखते हैं कि ये शिल्पा बेंजी और सरबजी शेट्टी जी दोनों की डिमांड बहुत ही प्यारी है। अगला जो डिमांड है हमारे MD फैज आलम जी की, इंजॉय कीजिए।
2: मेरे भैया की शादी बड़ी ही नखरे वाली।

बिल्कुल इसी बात में मुझे वो गाना याद आ रहा है, यानी कि तू ना लागो ना हमरा सोना के। फिलहाल यहाँ पे राजीव जी लिखते हैं ये भी गाना सुपर हिट लगा है अमन जी, और यानी कि कुंता बेनर जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद। एवनी फैजी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण गोपी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भी गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है वह हमारे यानी संदीप सुतार जी का है, सुनना चाहते हैं कातिलाना। इंजॉय कीजिए भाई कातिलाना जंजीर का गाना।

और बहुत से दोस्तों के गाने को आज मैं रिजेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ। बारिश खुलने का नाम नहीं ले रही है और जिसमें से नाम है वो राधे जी का और शिव कुमारी जी का और ये नाम है इनका यानी कि गुलाब जी, इनका भी मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ और लक्ष्मी जी बांका बिहार का इनका भी रिजेक्ट और ये हमारे यानी कि संदीप गवाई जी का और रवि महरे जी का और पिकू राय जी का, अनिल मेहता जी का और दत्तक्रम जी का, इन सभी का मैं कैंसिल कर

और यहाँ पे गोविंदा खंडारे जी का भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, हुकुम चंद जांगड़ जी और कुंता बेनी जी और जितेंद्र सिंह जी और संध्या पटेल जी और अर्शद जी, आप सभी का गाना मैंने कैंसिल कर दिया, आई एम सॉरी।

0: यहाँ पे आखिरी गाना प्ले कर रहा हूँ।
1: अमन जी खड़ी खम्मा, राजस्थान की सुरीली और मीठी भाषा, राजस्थान की सर्द रातें, राजस्थान के रेत के कण कण से चुन के लाया हूँ मैं एक गाना और वो गाना आपको है सुनाना। गीत के बोले बन्नी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, और ये एल्बम का गाना है, आप जरूर सुनाइए, बहुत मजा आने वाला है। आज रेडियो आर्ट स्टार पर मैं दीपक गायकवाड़, सीनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। अपने और अपने का ख्याल रखिए, सुनते रहे रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।

0: रोई गाना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां? चला जाऊं कैसे? चला जाऊं? ये तो वो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी। ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन हैं। ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ, इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो, पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक। इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां, और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

देखो ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया
0: आएगो आएगो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: सिर्फ बीच में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूं।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।